जों जथार साथारो गाहाम गोरों तंनानि बागै गाहाम गोरों तनिनानि बागै फियायबा गाहाम तंनानि हेनै साथार लाइमानि उख्लगब जों गोबां मा देरा मुंग कलायो गोबां मा चायाव कलायो गरमाव कलायो फियाबा लांमानि फोरोंमुं एबा रायदांखा जों सालब्रुम न' बाय थां न' चारिति साना बागै सागथारनानै अ चारिति सानानि अब मुंसासकनो सामुंनो चारिति सानानि कक सिमिया अब उंखा चिनि वानसुकमानो तेइबो काहाम तेइबो कुथुक तेइबो सागनि बागै दफानि बागै नांग्रोनानि सय सय ताइ सिमुं बाय कुप्लुम ख्लायति सानानि ताइ आबहाय ख्लायनो सालब्रुम नचों आबरकनो चारिति साना बागै नांगो चिनि सागनो काहाम खायति सानानि चिनि ओ बसाग ओ बसाखनो जों गाहाम गुरुं तनिमान खायसे जिनि ओ जे वान सुकमा रग ओ जे खलाइ ना हमा रग आमरकनो जों चारिति सायमान्नाय